आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

Olive, 106.3 FM, Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे बैठेंगे एक साथ, करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनेंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे। तो भाई अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए और कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि वहां पे हम जो है एक उड़ान भरने वाले हैं और साथ साथ याद दिलाने वाले हैं कि वाओ मोशाय, मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट, बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर कुछ प्यारे प्यारे गाने भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए सुबह सुबह आंखों की तारीफ से जो है हम शुरुआत करना चाहते हैं। और भी गाने हैं वैसे,
1: तुझे जितना मैं प्यार करूं यारा, किसी और से ना किया।
0: भाई फुल ऑन कन्विंसिंग चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मगर शो की शुरुआत करेंगे चांद मेरा दिल मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना सुनकर।

देखिए भाई, मतलब अब कन्विंसिंग से जो है मामला हट चुका है, अब धीरे धीरे लोकी ब्लैकमेलिंग तक पहुंच चुका है। बट एनीवे, यहाँ पे हम गाने सुनते हुए इस शो को जरा किक स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ, आपका वीकेंड कैसा था, क्या क्या किया और क्या क्या करना है इस हफ्ते, आज के दिन क्या क्या करना है, डिटेल में मुझे मैसेज कीजिए। मैं जरा दौड़ के जाके पानी पीकर आता हूँ, मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ है, मैंने ढंग से पानी नहीं पिया है। गर्मी का मौसम है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी लीड बाई एग्जाम्पल। मैं जाके पानी पीकर आता हूँ, आप गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन, तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
8: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:20 होने वाले हैं और यहाँ पे जो है, चलिए मैसेजेस जो आए हैं हमारे पास एक एक करके देख लेते हैं। अबरार भाई का मैसेज आया है और अबरार भाई ने हमें मैसेज किया है, उनका एक बहुत ही प्यारा सा एक फोटो जो है उन्होंने हमें भेजा है, लिखा है हैप्पी संडे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ हमें सतीश जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी काफी प्यारा एक फोटो भेजा है, उसमें गुड मॉर्निंग लिखा है। उसके साथ साथ उनके आज का जो एक रनिंग का जो उन्होंने जो ट्रैक बनाया है उसका एक फोटो है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मोहम्मद असलम भाई का भी मैसेज भी आया है और उसमें गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, फूलों का एक गुलदस्ता लगा हुआ है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है और इसमें लिखा है रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हेन टाइम इज गुड पीपल टेक योर मिस्टेक्स एज जोक्स, बट व्हेन टाइम इज बैड इवन योर जोक्स आर सीन एज मिस्टेक्स। इससे मुझे कहानी याद आई, पता है, मतलब जब मैं वेकेशन के टाइम में कॉलेज में पढ़ते वक्त, उससे पहले भी कई दफ़ा मैंने ये पैटर्न जो है नोटिस किया है मेरे घर में, जब मैं बहुत सीरियसली एक बात उन्हें बताता हूँ या फिर बहुत सीरियसनेस के साथ कोई बात करता हूँ तो मेरे घर वालों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वो हंस देते हैं और मजाक बनाना शुरू करते हैं, और जब मैं मजाक में कुछ बोलता हूँ तो बात एकदम सीरियस हो जाती है, वो मेरा मजाक जो है मजाक नहीं बैठता वहाँ पे। आपके साथ भी कैसा हुआ है अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, कि आप कोई चीज़ मजाक में बोलते हो वो बहुत सीरियस हो जाती है और जो सीरियसली बोलते हो वो मजाक बन जाता है? अगर ऐसा हुआ है तो आप बंधु हैं हमारे, हम वो दर्द समझ सकते हैं। मगर यहाँ पे शशिकांत पाटिल जी ने जो कोट भेजा है बिल्कुल सही बात है, जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो गलतियां माफ हो जाती हैं, जब वक्त बुरा होता है तो मजाक भी गलती बन जाती है। थैंक यू सो मच जी ये मैसेज करने के लिए। उसके साथ साथ नाजनीन जी का भी मैसेज आया है, नाजनीन जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, मे दिस संडे गिव यू द स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन यू नीड फॉर द वीक अहेड, हैव अ वंडरफुल डे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को एक बहुत ही बड़े और बिंदास दिन में विश करता हूँ, आप सभी ने बहुत प्यार से मैसेज किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो जाने इंतजार किस बात का है, सीधा मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताइए हमें क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ और इंटेंशन क्या है आपके आज के लिए, क्योंकि इरादे बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में अभी 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ओलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: और आज ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में जो है एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हम पूछना चाहेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक सवाल है। सवाल ये है कि अर्जेंटीना ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अर्जेंटीना ने अपने सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था, ये आपको बताना है मुझे। 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी। और यहाँ पे शिल्पा राव और अमित त्रिवेदी की आवाज में सुनते हैं इंग्लिश विंग्लिश का टाइटल ट्रैक।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:50 हो रहे हैं और यहां पे मैंने एक सवाल पूछा था ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में कि भाई अर्जेंटीना ने अपने सबसे पहला वर्ल्ड कप जो है कब जीता था, कौन से साल में जीता था। और मेरे पास जो है यहाँ पे थोड़े मैसेजेस आए हैं, मुझे जो है मैसेज भेजा है संधू जी ने, उन्होंने बोला है गुड मॉर्निंग ब्रदर, हैव अ वंडरफुल डे, आंसर इज 1978। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आया है, सी वी आर मूर्ति जी ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने बोला है अर्जेंटीना वॉन इन 1978 देयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। और एक और मैसेज मेरे पास आया है, असलम तहसील भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला कि दिल खुश हुआ, ये सॉन्ग वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको ये गाना, अच्छा लगा जब आपने बताया। और जवाब जो भेजा है मुझे बिल्कुल सही भेजा है, तो तालियां बजेंगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसी खुशी में काम करते हैं, एक साथ बैठकर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहां पे जो है मौसम का हाल देख लेते हैं। तो अभी का जो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है वो है 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठीक सा है। और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। हवा जो है 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है, यानी कि ताला फॉर अ रीजन। बस ठंडी हवा बहे तो और मजा आ जाएगा, वही चाहिए, कैप्टन कूल जैसे कूल हवा। कूल हवा है अभी का नीड ऑफ द आवर। और यही बोलते हुए हम यही एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि भाई अच्छे अच्छे नज़ारों का फोटो जो है आप बेझिझक बेखौफ जो है भेज दीजिए हमें 3311 1063 पर, क्योंकि स्टूडियो के चार दीवारों के अंदर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, बाहर क्या हो रहा है वो तो देख नहीं पाऊंगा, मगर आप देख सकते हैं। तो मेरी आंखें बनिए, नज़ारे दिखाइए। और यही बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं। मैं वापस आऊँगा, मूवी का गाना सुनते हैं। और ये गाना जो है इम्तियाज़ अली का भी काफ़ी फेवरेट गाना है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, उनके प्लेलिस्ट में ये गाना रहता है। ऑब्वियसली उनकी बनाई हुई मूवी का गाना है, मगर ये गाना बहुत स्पेशल है उनके लिए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi guys, this is Abar Chetty Khurana and you are listening to Radio Olive.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:19 हो रहे हैं और यहां पे मेरे पास एक मैसेज आया है। मोहम्मद आमिर भाई ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव जी, और लिखा है कि नो वन टोल्ड यू टुडे, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्रिलियंट, योर स्माइल इज ब्यूटिफुल, यू आर स्ट्रांग, योर हैप्पीनेस इज एसेंशियल, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर यू आर a blessing to this world. Thank you so much जी, thank you so much. इतने प्यार से तो मम्मी ने भी कभी बात नहीं की मेरे से। बहुत अच्छा लगा, thank you so much. उसके साथ साथ मुझे सामी भाई का मैसेज आया है, उन्होंने जो है फोटोज भेजे हैं थोड़े, और एक बहुत ही प्यारा सा फोटो भेजा है उन्होंने और लिखा है अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया है, सब खैरियत, आप बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और थैंक यू सो मच ये फोटो भेजने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी खुशी में एक काम करते हैं, एक साथ बैठ कर सुनते हैं जबरदस्त हिट्स और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहां पे वक्त आ चुका है फिटनेस के बारे में बात करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो ओके। चलिए हम एक्सरसाइज के बारे में जो है एक फैक्ट बताना चाहेंगे। एक फैक्ट हमें मिला है जिसमें लिखा है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है। अब चलिए इसके रिसर्च के बारे में बात करते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि सुबह एक्सरसाइज करना बॉडी के इंटरनल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को सपोर्ट करता है। मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी को क्लियर सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है, जिससे स्लीप वेक साइकिल जो है ज्यादा कंसिस्टेंट बन सकता है। और रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, रात को जल्दी नींद आने में मदद मिल सकती है, विच इज ट्रू, एंड डीप स्लीप का ड्यूरेशन इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट डे एनर्जी और अलर्टनेस जो है बेटर हो सकती है। सुबह वर्कआउट के दौरान बॉडी टेम्परेचर और अलर्टनेस नेचुरली इंक्रीज होते हैं, दिन भर ये ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे रात के टाइम बॉडी स्लीप के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग एक्सरसाइज की फायदेमंद है, डे के किसी भी टाइम की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। बस कुछ लोगों में बेड टाइम के बहुत क्लोज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नींद को टेम्परेली डिले कर सकती है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, अगर आप सोने से कुछ टाइम पहले बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं तो नींद थोड़ी डिले हो सकती है। मोटी मोटी बात यह है कि रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है बॉडी क्लॉक को सिंक में रखने में बहुत हेल्प करती है, जिससे रात की नींद की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों इंप्रूव हो सकती है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Doctor on air.
5: Brought to you by Naseem Healthcare.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
6: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
8: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.
3: Jadoo lagya tenu ishq da roop.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रुप स्टेजेस जो है फाइनली खत्म हो चुके हैं और आज जो मैचेस हुए थे उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। कोलंबिया पोर्चुगल का मैच हुआ था, 0-0 ड्रॉ हो गया। कांगो और उज्बेकिस्तान में 3-1 से जो है कांगो ने अपनी जीत हासिल कर ली। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया में 3-3 से मैच ड्रॉ हो गया। जॉर्डन वर्सेज अर्जेंटीना में 3-1 से अर्जेंटीना ने मैच को अपने हाथ कर लिया है। और भी कुछ मैचेस हुए थे उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं जो आज हुए थे। पनामा वर्सेज इंग्लैंड में इंग्लैंड ने 2-0 से जो है मैच जीत लिया। क्रोएशिया और घाना के बीच में से 2-1 से क्रोएशिया ने मैच जीत लिया। और उसके साथ साथ जो है आज से, अब मतलब आज शाम से जो है राउंड ऑफ 32 भी शुरू हो जाएंगे। आज रात से और शाम से जो है राउंड ऑफ 32 के मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो कौन से मैचेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
6: Cool song.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक से एंड विन।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:32 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: चलिए यहाँ पे बात करते हैं आज के मैच के बारे में। जी आज जो है राउंड ऑफ 32 स्टार्ट हो जाएगा और मैच होने वाला है कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। अब देखिए मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है क्योंकि कनाडा काफ़ी अच्छी तरीके से जो है खेल रही है। ग्रुप स्टेज में भी उन्होंने काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है दिखाया था। उसके साथ साथ काफ़ी बढ़िया एक सरप्राइज था साउथ अफ्रीका के लिए क्योंकि वो भी क्वालिफाई हो गए। और इस बार मैंने देखा कि कुछ ऐसे टीम्स जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म कर रही है, उसमें से एक साउथ अफ्रीका भी है। और आज जो है मैच होने वाला है रात को 10:00। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीत सकता है, आपके क्या प्रेडिक्शंस है जरा मुझे बताइए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, आप बताइए आपके फेवरेट्स कौन हैं आज के लिए। और तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। यहाँ पे हम प्ले करते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ब्लड मनी का गाना। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting contention. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सदेश। तो यार, मैं ना रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था। कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने जो है नया रेगुलेशन निकाला। इसके बारे में हमने बात भी की थी कि अब जो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको ईयू रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे और उसके हिसाब से रिमूवेबल बैटरी वापस लेके आनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें ये सब करनी पड़ेंगी। एंड उसके बारे में थोड़ा डीप डाइव कर रहा था मैं और चीज़ें पढ़ रहा था, तो इससे मैंने एक चीज़ नोटिस की है। तो ईयू में जो भी रेगुलेशन आता है ना, कुछ टाइम बाद वो ऑल ओवर वर्ल्ड उस रेगुलेशन को अप्लाई कर दिया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उस एक सिस्टम की ओर बढ़ जाता है, और उसके हिसाब से अगर देखें तो एप्पल का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि एप्पल ने अपने एक्सेसरीज के थ्रू ही मिलियंस कमा लिए थे। बट अगर ये रेगुलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। कॉमन लोगों को जो है बहुत हद तक अननेसेसरी परचेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा और एक्सेसिबल हो जाएगा टेक जो है। बट एज अ कंपनी एप्पल को बहुत कुछ लॉसेस जो है इनकर करने पड़ेंगे इसके लिए, और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो कमा ही लिया है, कहाँ लेकर जाओगे कमा के, वो वाला एक सवाल आ जाता है। बट या ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब टेक सबसे सबके लिए एक्सेसिबल होता है तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक कॉन्वर्जेशन अपने AI के साथ की थी, ठीक है, तो मैंने AI से पूछा कि यार देखो यार, तुम इतने बढ़िया चीज़ हो, अगर पूरी दुनिया में फ्रीली अवेलेबल हो जाते तो कितना अच्छा होता लोगों के लिए, है ना, काम आसान हो जाता सबका। तो AI बोला कि भाई बात तो बिल्कुल सही कही है आपने, हम तो आज से आपसे 100% सहमत जरूर हैं, मगर बात यह है कि AI डेवलप करने में जो R&D लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए ये लोग जो है चार्ज करते हैं। तो मैंने बोला भाई ऐसी बात है, तो एक बॉडी बनाओ, ठीक है, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाओ जिसमें वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो पैसे पूल करेंगे जितना हो सकता है, और वो पैसे यूज़ करके AI को फंड करो रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो AI बोला बात तो बिल्कुल सही कही आपने, ये आइडिया तो सोचा जा सकता है, मगर ये आजकल कोई सोच नहीं रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से एक ऐसा एक इंटरनेशनल बॉडी होना चाहिए जहाँ पे जैसे UN है, सिमिलरली UN को ही एक वो लेना चाहिए कि हाँ भाई, हम AI के डेवलपमेंट के लिए सारी कंट्रीज जो है पिच इन करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके हिसाब से उस कॉमन फंड में से, उस कॉमन पूल में से AI को फंड करेंगे, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इक्वली ये चीज़ें एक्सेसिबल हों। अब ये होगा नहीं होगा ये तो खुदा जाने, मगर अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे टेक्नोलॉजीज जो हैं जब लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगी तभी उसका जो है इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ता है। और यही बात बताते हुए, याद दिलाते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ना चाहेंगे और आपके लिए प्ले करना चाहेंगे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
1: रेडियो ओलिव पर। Song of the Hour.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

अगर लगा लो 10 लोगों ने मेरे से बात की है, 10 आदमियों ने मेरे से बात की है, तो 10 में से 8 लोगों ने बोला कि शादी नहीं हुई, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया करके। और मैं ये सोच रहा था कि क्या हो सकता है इसका रीजन, वॉट इज द रीजन फॉर दिस। और यही बात सोचते सोचते पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग से ब्रेन वेव्स ट्रैवल करके मेरे यूट्यूब में चले गए कि नहीं पता नहीं, मगर मेरे एल्गोरिथम में भी ऐसे वीडियोस आने लग गए जहाँ पे मैरिड कपल्स ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल बीवी ऐसे कुछ बात कर रही है, हस्बैंड उसे गाड़ी में बिठा देता है, उसके बाद बाहर थोड़ा देर जो पीस मिलता है उसे 10 सेकंड का उसे एंजॉय करता है, ऐसे वीडियोस रिकमेंड होने लग गए। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्यों है ऐसा, वाई ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे मन में एक एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं जानना चाहूंगा आपके मन में क्या है, आपको क्यों लगता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी नहीं हुई तो बहुत बेहतर है, मगर कुछ लोग बोलते हैं शादी हुई तो बहुत बढ़िया है। बट अगर लोग कहते हैं कि नहीं हुई तो बहुत बेहतर है, व्हाट माइट बी द रीजन। देखिए फनी आंसर्स भी यहाँ पे वेलकम्ड है, सीरियस ओपिनियंस भी यहाँ पे वेलकम्ड है। 3311063 पर तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं वापस आऊंगा, मूवी का गाना प्ले करते हैं, इश्क मस्ताना। Oh,

0: ओ पट दे तुड़ा।
1: All F Short Break.
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, this is Air Rahman.
5: Air Rahman.
4: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
5: Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: I'm in number one. Radio Olive.
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
9: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में 9:18 हो रहे हैं और यहां पे जो है एक सवाल मैंने पूछा था कि हाँ भाई, शादी से लेके बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं किया तो बहुत बढ़िया करके. मेरे पास एक मैसेज आया है, दीपक जी ने मुझे बोला है कि उन्होंने वो एक प्रवर्ब मुझे भेजा है, बोला है कि भाई जो एक बार गर्म दूध गिर जाए तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, समथिंग रिलेटेड दैट. क्योंकि उन्होंने मलयालम वाला जो है मुझे कोट करके भेजा था, तो मलयालम में कहते हैं कि एक बिल्ली जो गर्म पानी गलती से पी लेती है वो ठंडा पानी भी फूक मार के पीती है, समथिंग रिलेटेड टू वही छाछ वाला जो प्रवर्ब है. ठीक है, तो कहते हैं कि एक बार हो गई गलती तो हम चाहते हैं कि लोग ना करें. देखिए, ये तो काफ़ी फ़नी तरीके से इन्होंने बोला है, बट मुझे काफ़ी सीरियस आंसर भी आया है. शीतल ने मुझे मैसेज भेजा है, उन्होंने बोला है कि आई थिंक आई हैव एन एक्सप्लेनेशन करके उन्होंने बताया है कि यूजुअली क्या होता है, जब भी लोग शादी करते हैं तो दोनों पार्टनर्स अपने सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं उस इंस्टीट्यूशन में, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होते तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं और प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, दिक्कतें होती रहती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं. तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते कैसे करना है. कभी कभी वो कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, कभी बात करना बंद कर देते हैं, कभी झगड़ा करते रहते हैं. तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे आप एक मैरिज की क्राइसिस को एड्रेस करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं क्योंकि कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, उसके साथ साथ लोग जो है ओपन कम्युनिकेशन के लिए उतना रेडी नहीं होते, आगे नहीं आते हैं. सो आई थिंक दिस माइट बी द रीजन करके. थैंक यू सो मच शीतल, काफ़ी प्रोफाउंड एक इंसाइट जो है आपने दिया है, थैंक यू सो मच. वैसे मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट में बोला गया था कि धीरे धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज लोगों का जो है मन हटता जा रहा है, और इंडिया में भी जो है वो बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं करनी शादी. एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ. मेरे से पूछा जाता है कि हाँ भाई शादी कब कर रहे हो, मैं कहता हूँ नहीं करनी, अभी नहीं करनी. तो मेरे से पूछते क्यों नहीं करनी, मैंने बोला भाई मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, आराम से करेंगे. क्योंकि इट्स अ सीरियस थिंग, ऐसा नहीं है ना कि तुम ऐसे बस चलो कर लेते हैं करके कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता. एक और इंसान तुम्हारे लाइफ में आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहती है हमारे ऊपर कि चीज़ एकदम ठीक रहे. तो मेरा रीज़न तो ये है, बट बहुत सारे लोग और भी रीजन्स बताते हैं. क्या मैं मैरिज को सपोर्ट करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये डिबेट उसके बारे में नहीं है. मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोग उसको आजकल काफ़ी फन तरीके से मीम्स के थ्रू भी दिखा रहे हैं, बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात करने का था. थैंक यू सो मच ये मैसेज करने के लिए मुझे. और यही बात बताते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं जबरदस्त हिट.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:31 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई एक चीज हम बताना चाहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं, थोड़े सैड भी हैं क्योंकि इंडिया आयरलैंड के बीच में जो मैच हुआ उसमें इंडिया हार गई। पहली बार इंडिया आयरलैंड से जो है मैच हारी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो है एक रिपोर्टर ने पूछा था गौतम गंभीर से कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, हैं आपके कोचिंग में तो हम हार गए इनसे करके ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर गौतम गंभीर ने याद दिलाया कि मेरी ही कोचिंग में T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, वो याद नहीं आपको करके। और उस चीज़ से ना मुझे मन में ना एक वो आया, एकदम से एक सवाल नहीं बट एक रियलाइजेशन आया कि कितना भी हम अच्छा कर ले, कितना कुछ हम अचीव कर लें, अगर बंदा एक गलती कर देता ना तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर उस गलती पर ही फोकस की जो है रखी जाती है। इसे रीसेंसी बायस भी बोलते हैं। और कुछ लोग दिखते हैं कि हाँ भाई अभी इसने क्या गलती की, उसी के ऊपर उस बंदे का पूरा पर्सनैलिटी जो है टाइप कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता ऐसा, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो बिगर पिक्चर देख पाते हैं और हारे हुए को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए देखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी बंदा फॉल्टर कर रहा है, कहीं से भी कोई फेलियर फेस कर रहा है, तो ये भी देखो कि उसने इतना सब कुछ अचीव भी किया है। तो ये जो है सीजन्स की तरह आते जाते रहते हैं, मगर हम इतने ऑब्जेस्ट हैं, इतने ज़्यादा तरीके से इस चीज़ के पीछे पागल हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं होता ये सब। बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट यू नो वी थिंक अबाउट दिस, कि कभी कभी किसी को ऐसे गलत बोलने से पहले या फिर किसी को भी ऐसे पॉइंट आउट करने से पहले सोचो कि भाई उसने इतना भी किया है तो थोड़ा तो बनता है, कहीं ना कहीं तो हमें छूट देनी पड़ती है ना। वही अब क्या करें, फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। मोहित चौहान की आवाज में सुनते हैं रॉक स्टार का गाना। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। जियो बिंदास।

0: छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यहाँ पे मुझे मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया था, उन्होंने पूछा है कैसा रहा आपका वीकेंड, होप गुड। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया वीकेंड था, काफी अच्छे से गया, मस्त था। और उसके साथ साथ मैं थोड़ी देर पहले ऐसे YouTube में कुछ चीजें ढूंढ रहा था, देख रहा था, तो बहुत ना कुछ पर्टिकुलर अजूबे से यूट्यूब अकाउंट्स मुझे मिले। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस देख चुके होंगे जो मैं बताने वाला हूँ आपने, शायद कहीं ना कहीं तो इसे देखा ही होगा। कोई एक मूवी या फिर कोई एक सीरीज का एक सीन होता है, ठीक है, वो थोड़ा प्ले होता है, उसके बाद वो एकदम से कट हो जाता है और अगला शॉर्ट या फिर अगला रील जो आ जाता है, तो फिर हमें जब उस प्रोफाइल में जाके हम चेक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स जो हैं मूवी से सीरीज से बनाए होते हैं, मगर ये सब करने के बावजूद बंदा नाम नहीं डालता कि भाई कौन से मूवी का सीन है ये, कौन से सीरीज का सीन है ये। कमेंट सेक्शन में देखना पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक कभी कभी जाना पड़ता है, तब जाके शायद इसका नाम मिलता है। ये जो क्लिकबेट डालते हैं, ठीक है, ये ऐसे सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बता दिया करो कौन सी मूवी है। कभी कभी इंसान के पास वक्त नहीं होता पूरा बैठ के छानने का कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई कौन सी मूवी है ये करके। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हम आपका दर्द समझ सकते हैं। फिलहाल इसी दर्द के बारे में बात करते हुए टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे कशिश आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। और जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे?
1: आएंगे नहीं, आ गए।
2: Olive Short Break. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

भोपाल से बाहर आ गई हूँ, लेकिन भोपाल मुझसे बाहर नहीं आ पा रहा है। भोपाल का, इंडिया का स्केड्यूल जो है वो मेरे अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। आज संडे है, ठीक है, और मुझे संडे को छुट्टी वाली वाइब भी आ रही होती है। संडे को मेरा काम करने का मन ही नहीं करता है। मेरी बॉडी को पता है कि आज संडे है, तो आज रिलैक्स मूड पे रहना है, आज तो बाल अच्छी तरीके से धोने। इसलिए भले ही मैंने कल ही हेड वॉश किया हो, लेकिन फिर भी मेरे बालों में से इतना ऑयल जो है वो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब मैं भी काफ़ी अमीर हूँ, क्योंकि मेरे सर पे भी ऑयल है। आई नो खराब जोक था, लेकिन संडे को जब मेरी बॉडी ये कह रही है कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, तो आप अच्छे जोक मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को मतलब फ्राइडे से लेकर संडे तक वीकेंड वाली वाइब ही आ रही होती है, क्योंकि हमारे लिए तो संडे जो है वो मंडे, हमें तो संडे ब्लूज होने चाहिए, लेकिन मेरे तो संडे येल्लोज हैं। संडे येल्लोज मतलब येल्लो होता है जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप छुट्टी वाली वाइब में रहते हो, तो मेरे लिए संडे जो है वो भी छुट्टी वाली वाइब में ही गुजर जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड बाकी बातचीत जो है आज की हम जारी रखेंगे, काफी सारी बॉलीवुड की गपशप आपके लिए लेकर आ गई हूँ, एंड फैशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, खाने पीने के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ फनी न्यूज जो है दुनिया भर की, देश दुनिया की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन एक गाने के उस पार। सो फिलहाल एक ट्रैक जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तू तू है वही गाने का नाम है, इसे एंजॉय करो और बाकी आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। असीम अजहर का ये गाना है, एंजॉय करो जियो बिंदास।

0: मैं इस गाने की तब से फैन हूँ जब इसका ओरिजिनल वर्जन मिलिंद गाबा ने जो है रिलीज किया था। आई रिमेम्बर कि कोविड का टाइम चल रहा था एंड वो वीडियो लॉन्च हुआ था एंड मैं बार बार यूट्यूब पे प्ले करती थी। मम्मी को जो है इरिटेशन हो गई थी कि यार एक ही गाना कितनी बार प्ले कर रही हो। एंड उसके बाद कोविड जो है चल ही रहा था उसी के दौरान जो है ये एक मूवी में आ गया था, सरदार का ग्रैंडसन मूवी का नाम था एंड वो मूवी भी हम सब ने साथ में बैठ के देखी थी। थोड़ी लीग से हट की मूवी थी, बहुत फन मूवी थी। अर्जुन कपूर से जो है कम ही उम्मीद होती है अच्छी मूवीज़ की, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में 10:15 हो रहे हैं एंड संडे का आज दिन है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी बॉडी अभी तक जो है वीकेंड वाले मोड पे है, क्योंकि मुझे इंडिया में संडे को जो है रेस्ट करने की आदत थी ना, और यहाँ पे फ्राइडे को मिल जाता है तो मेरे लिए एक ऐड ऑन हो जाता है। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन मुझे जो है ऐसा लगता है कि यार वीकेंड चल रहा है, वीकेंड चल रहा है, वीकेंड चल रहा है। लेकिन रियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे मौसम की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो मौसम है ये हमें किस तरीके से और अभी परेशान करने वाला है। सो दोहा की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। आज का हाइएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 39 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अब देखो जैसे ही मैं कुछ 20 वाली लाइन में टेम्परेचर देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हश, चलो थोड़ा सा जो है हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा सा जो है ठंडक मिलेगी, लेकिन फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कूलनेस के नाम पे कूल सॉन्ग ऑफ द आर है, इसे सुन लेते हैं और अपने दिल को जो है ठंडक पहुंचा देते हैं जब तक जो है टेम्परेचर और नहीं गिरता।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: The Yellow Diary का ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए। आकर जरा मैं एक क्रिकेटर की जो है लाइफ की टी आपको देने वाली हूँ, यानी गॉसिप आपको देने वाली हूँ कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है उनके बारे में। सो स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदा।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाई परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

यार मस्ती मूवी का ये ट्रैक था, ऑन द रूफ इन द रेन। एंड यार पता है ये गाना सुन के ना मुझे अचानक से बहुत भयंकर वाला नॉस्टैल्जिया हो गया। मतलब सच में बचपन में ये मूवी मैंने बहुत देखी है। एंड इस मूवी का एक और ट्रैक है दिल दे दिया है, जहाँ तुम्हें देंगे गिला नहीं करेंगे सनम। ये मेरे ना नानू का, मेरे नाना जी का ना फेवरेट गाना है। एंड उन्हें पता भी नहीं है कि इतने और अच्छे अच्छे गाने जो है इस मूवी में एग्जिस्ट करते हैं। एंड सच में यार मुझे याद आ गया, मैं ना इस समर कैंप में जब जाया करती थी ना, तो ऑन द रूफ इन द रेन इस गाने में डांस किया करती थी यार। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए हम सबकी लाइफ मस्त ही चलती रहती है, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे मस्त लाइफ तो हार्दिक पांड्या जी की चल रही है। सो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक इंडियन फेमस क्रिकेटर सेलिब्रिटी के बारे में टी मैं आपको देने वाली हूँ। टी मतलब यार क्या होता है कि आजकल किसी भी गॉसिप देने को कहते हैं स्पिल द टी, तो मैं बस आज आपको टी देने वाली हूँ। सो चाय पे हमारी चर्चा के जो है इस बार के विषय है हार्दिक पांड्या जी। ये कहा जा रहा है इंस्टाग्राम के मेरे जासूसों के द्वारा कि हार्दिक ने जो है शादी कर ली है उनकी जो रीसेंट गर्लफ्रेंड है मिहिका, उनके साथ एक सीक्रेट सेरेमनी में, क्योंकि मिहिका के रीसेंट पोस्ट में कुछ ऐसी जो है सस चीज़ें यानी सस्पिशियस चीज़ें जो है वो देखने को मिली है, जिससे ये पता चल रहा है कि ओह इनकी तो शादी हो गई है। सो अब इंस्टाग्राम है मेरे जो जासूस हैं उन पर पूरी तरीके से ना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये तो अच्छी बात है। तो हम जो है ऐसे गॉसिप कर लेते हैं, जब एकदम फाइनल पक्की वाली खबर आ जाएगी तो आपको और मुझे सबको पता चल जाएगा। मैं भी एक बार कन्फर्म करके ज़रूर से आपको बता दूंगी। फिलहाल फिलहाल फिलहाल फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो हम सुनने वाले हैं। सो हर उस इंसान को जल्दी से जाके मैसेज कर दो जिसे आप ही कहना चाहते हो कि आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लोगे, आप हमेशा हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहोगे, चाहे कितना भी लंबा सफ़र हो, चाहे 4 कदम हो या 400 कदम हो। ऑब्वियसली मैं थक जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ चलेंगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ये कहते हुए अगला गाना आ रहा है, सो अपने लव्ड वंस को डेडिकेट कर दो। पीके मूवी का ये ट्रैक श्रेया घोषाल की आवाज में और शान की आवाज में, और बस कहते रहो जियो बिंदास।

0: बाबा थेरेपी है थेरेपी। अली जफर की आवाज जो खूबसूरत लगी है इस गाने में, मतलब मेरे पास तो सवाल जवाब कुछ भी नहीं है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूं। एंड उस सेगमेंट का वक्त हो गया है जहां पर आपको आपके स्ट्रेस से डील करने का सबसे फन फनी तरीका जो है मैं आपको बताती हूं, जिससे आपको मजे ही आ जाए। तो देखिए आज जो है हम स्ट्रेस को दूर भगाने का एक ऐसा तरीका जो है यूज करने वाले हैं जिसमें आपकी AI आपकी मदद कर सकती है। सो जल्दी से अपना कोई भी AI चैटबॉट जो है वो उठाइए, ChatGPT, Gemini, Claude या फिर नॉर्मल गूगल सर्च भी आप यूज कर सकते हैं, और उस पर जाकर अगर आपको स्ट्रेस हो तो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस आपको लिखने हैं जिसका फनी रिप्लाई जो है वो आपका ChatGPT या आपका AI जो है वो आपको देगा। फनी फनी क्वेश्चंस आप, बेतुके क्वेश्चंस आप पूछिए जब भी आपको स्ट्रेस हो, कि क्या मछलियों के आईब्रोज होते हैं, क्या अगर मैं जो है सीधा चलूंगा तो क्या मैं अर्थ को जो है उल्टा घुमा रहा हूँ, ऐसे फालतू के क्वेश्चंस अगर आप अपने क्लॉड से AI से पूछेंगे ना तो वो आपको फनी रिप्लाई देगा एंड आपको लगेगा कि यार कितने वर्थलेस सवाल हैं इस दुनिया में और मैं इन चीज़ों पे स्ट्रेस ले रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब आप अपना मन भटकाने के लिए कुछ फनी चीज़ें जो है वो सर्च करते हैं आपके दिमाग पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है। सो आप ये तरीका जो है अपनाइए। 3311063 पर आगे मुझे बता सकते हैं कि क्या ये तरीका वर्क करता है या नहीं करता है। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर सुनने का वक्त हो गया है।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. ये
0: गाना। एश किंग का ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:10.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: फर्नांडिस, एआर रहमान का ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर बॉम्बे मूवी से। अब देखिए यार, गाने कितने भी रिक्रिएट हो जाएं, लेकिन जो ओजी है वो तो ओजी ही रहता है। ओरिजिनल की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे आर्टिस्ट खुद ही खुद का गाना रिक्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जिस तरीके से ये हम्मा सॉन्ग जो है बॉम्बे मूवी में पहले दिखाया गया था, एआर रहमान ने जो है इसे बनाया था, एंड उसके बाद इस गाने को ओके जानू मूवी में जो है वो रिक्रिएट किया गया था। बादशाह ने उसमें अपना एक रैप भी डाला था, लेकिन वो गाना भी बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन इस वाले गाने से जो है ना मैच नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही अभी एक नया गाना जो है धमाल 4 के लिए रिक्रिएट किया गया, संजू राठौड़ जिन्होंने अभी एक नया गाना निकाला था, लाल लाल कलर ची बांगड़ी, वो वाले जो संजू है उन्होंने एक गाना बनाया था कोविड के टाइम पर, गुलाबी साड़ी अनिल लाली लाल लाल, उस गाने को रिक्रिएट किया गया है रितेश देशमुख के साथ। एंड गाना बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो वाइब मिसिंग है जो पहले ओरिजिनल वाले गाने में थी, ओजी गाने में थी। आपको ये गाना कैसा लगा? 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। एंड आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल वाले या रिक्रिएटेड वाले? क्योंकि देखो हम तो यहाँ पर आपको सभी सुनाते हैं आपकी पसंद के अनुसार। सो जल्दी से बताइए, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इंतजार कर रहा है आपका आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। उसके बाद जरा एक सवाल आपसे पूछना था मुझे लड़कियों के तैयार होने से रिलेटेड, सो वो भी पूछूंगी।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ

शादी वाली वाइब आ चुकी है और बस इसीलिए शादी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है मैं आपसे पूछने के लिए आ चुकी हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया की दुनिया से एक जो है सवाल मैं आपके लिए उठा के लाई हूँ। सो अभी जो है एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी ने ऐसे इंटरनेट में एक सवाल थ्रो किया कि मेरी ना शादी होने वाली है, सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए, कुछ टिप्स जो है वो आप मुझे दे दीजिए। सो देखिए मैं बताऊंगी कि इंटरनेट वालों ने क्या क्या टिप्स दिए हैं भाई साहब को, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिले किसी की शादी हो रही है उसको टिप्स देने का तो आप क्या टिप्स देंगे। 3311063 ये जो है मेरा नंबर है व्हाट्सएप वाला, इस पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, आपको जैसे मुझे मैसेज करना हो आप वैसे कर सकते हैं, पर बस ये बताना है कि वो कौन सी मेजर टिप्स है जो आप इन भाई साहब को देना चाहेंगे इनकी शादी हो रही है उससे पहले। फनी अगर टिप्स हो तो और ज्यादा बढ़िया होगा। फिलहाल TMO गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए, बाकी इंतजार कर रही हूँ मैं आपके मैसेजेस का। सो आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहो और इस गाने के साथ कहते रहो जियो पिंदास।

0: इस गाने को ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ऐसे ही नहीं कह रहे हम. देखो फ्रेश वाइब्स तो है, एकदम नॉस्टैल्जिया जो है वो आ गया, बचपन की याद आ गई जब वो तुमी हो बंधु सखा तुमी पे मैं डांस किया करती थी. फिलहाल काम की बात कर लेते हैं. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त ले आई हूँ. एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि एक आदमी ने इंटरनेट पे एक सवाल पूछा है लोगों से कि अगर मतलब अगर नहीं मतलब मेरी शादी हो रही है आप मुझे क्या टिप्स देना चाहते हैं. इंटरनेट वालों ने बहुत सारे टिप्स दिए कि फोटोज़ जो है अच्छी खींचना सीख लो और जो वो बोले जो वो पहने लहंगा उससे मैचिंग जो है कपड़े पहन लेना. लेकिन हमारे लिसनर्स ने हमें बहुत ही प्यारा सजेशन दिया. उन्होंने कहा है कि सर आपको बस एक आदत डालनी होगी कि सोने से पहले हर रोज़ मैडम को सॉरी बोल के सोना होगा. और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. क्या बात है सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ना 15-20 साल हो गए हैं शादी के, तभी जाकर ये जो समझदारी है ये आपके अंदर आ पाई है. वैसे इस पर बातचीत जो है जारी रख सकते हैं. लेकिन आने के बाद एक फैशन में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में. सो स्टे ट्यून रहो. फिलहाल सैयारा गाना नहीं चाहती मैं. फिलहाल सैयारा गाना जो है एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM. Geo Bindas.

जबरिया जोड़ी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर शो आपके लिए लाइफ मसला लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है मोस्ट अवेटेड सेगमेंट का, जो है हमारा फैशन वाला सेगमेंट। सो अगर मैं बात करूँ फैशन की, सो इस वक्त कुछ ऐसा जो है वो ट्रेंड में नहीं है जो बहुत ही यूनिक हो या बहुत ही हटके हो, बल्कि जो पुरानी चीज़ें थी वो वापस फैशन में आ रही हैं। एंड अगर मैं बात करूँ एनिमल प्रिंट्स की, तो वो काफ़ी इन है अब। लेबर प्रिंट और लाइन प्रिंट जो है वो तो हम देखते ही हैं कि यार ओके सभी पहन रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़ीब्रा प्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। एंड क्योंकि उसे वर्सेटाइल तरीके से जो है टीम अप किया जा सकता है, टाई अप किया जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप वैरायटी में इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से काफ़ी सारे आउटफिट्स पे जो है

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
5: जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: बहुत ही प्यारा वाला ट्रैक रह गुजर गाने का नाम आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड देखिए फैशन की बात हमने कर ली है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां ना फैशन के हिसाब से कपड़े तो खरीद लेती हैं लेकिन पहनती नहीं है. कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक ना कॉन्शियसनेस होती है कि यार ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड इसके बारे में ना एक रिसर्च भी हुई है. रिसर्चर्स का ये कहना है कि लड़कियां तैयार होते हुए ऑन एन एवरेज 13 आउटफिट्स ट्राई करती हैं एंड उसके बाद पहला जो आउटफिट उन्होंने पहना होता है वही पहन लेती हैं. सो ये सिर्फ आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये सभी लड़कियों की कहानी है. रिसर्चर्स का ये कहना है. एंड अगर मैं बात करूँ कुछ कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च करने वाले लोगों ने ये भी कहा है कि लड़कियाँ जो है वो एक मेजर शॉपिंग कर तो लेती हैं लेकिन अपने वार्डरोब का सिर्फ 10% ही वो डेली यूज करती हैं, बाकी वैसे का वैसा रखा रहता है. एंड ये बात से ना मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं जब ऑफिस आ रही हूँ मैं डेली जो है वही कपड़े धोती हूँ, वही कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि अलमारी से मैं निकाल ही नहीं रही हूँ. मैं जहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ वहीं से फोल्ड करके वहीं रखती हूँ एंड सुबह वही पहन के आ जाती हूँ. सो रिपीट पे कपड़े जो है हम पहनते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे पास तो कुछ पहनने को है ही नहीं जबकि इतनी अलमारी भरी हुई है लेकिन पहनना चाह नहीं रहे हैं. थोड़ी सी देर में आकर एक मूवी का रिव्यू भी आपको दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड रहो, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आर हैप्पी रेडियो सेट्स पर. इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

उदित नारायण और आशा भोसले जी की आवाज में। गाने का नाम जब दिल मिले। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं, लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, लाइफ मस्त है तभी होती है जब, मतलब ऑब्वियसली लाइफ मस्त तभी होती है जब आप अच्छे कंटेंट को जो है कंज्यूम कर रहे होते हो। एंड सबसे बढ़िया कंटेंट मुझे ऐसे लगता है बॉलीवुड में बन रहा था 80s में। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो कभी आए नहीं थे, वो कॉन्सेप्ट जो है लाए जा रहे थे, जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट था लेकिन हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट लग रहे थे। एक वैसी मूवी मैं आपको आज सजेस्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। और ये जो मूवी है ना, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स मूवी नहीं है। आई एम डैब्स, और आपने इस मूवी के बारे में सुना होगा बिकॉज मैंने अपनी दादाजी के साथ बैठ कर ये मूवी देखी थी एंड अपने भाई के साथ लड़ाई भी की थी क्योंकि उसको कुछ और शायद कार्टून या कुछ देखना था टीवी पे, लेकिन ये टीवी पे आ रही थी एंड मैंने और दादू ने चूज़ किया कि हम ये मूवी देखेंगे बिकॉज इस मूवी के कुछ गाने हैं जो हमारे एब्सोल्यूट फेवरेट है। मैं बात कर रही हूँ पड़ोसन मूवी की। 1968 में ये मूवी आई थी जिसमें भोले को जो है उनकी नेबर बिंदु से प्यार हो जाता है एंड उसके बाद ये म्यूजिकल जो है एक लव स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है एंड सच में एब्सोल्यूट सिनेमा। फिलहाल अंबर सरिया गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी बातें जो है थोड़ी देर बाद कर लेंगे यार। मैं हूं आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

बहुत सारे लोगों की फेवरेट मूवी तमाशा से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय बोलने का। तो जाते जाते बस यही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी जो है धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि हाइड्रेशन का ध्यान रखना है ना। और हाँ, सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं चलती हूँ। 3311063 हमारा व्हाट्सअप वाला नंबर है, इस पर जो है आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। रेडियो ऑल ऑफ के सभी आरजेज आपके मैसेजेस को जो है रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, एकदम बैठे हुए हैं कि यार आप मैसेज करें और हम रिप्लाई कर दें। फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आरआर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी मुझे मिस करते रहिए, कल इसी टाइम पर वापस मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par, and what a beautiful track. Itne badhiya gaane se shuruaat hui hai, to badhiya hi jaane wale hain agle 3 ghante bhi, hai na? Maine predict kar diya aur aap ho mere saath, to koi is baat ko badal hi nahi sakta. अब आप बताइए कि कैसे हैं आप, क्या हालचाल हैं आपके. ये जो हफ्ते की शुरुआत हुई है 28th of June, कैसा ट्रीट कर रहा है ये संडे आपको? मन कर रहा है काम करने का? नहीं भी कर रहा है तो भी करना तो पड़ेगा. और वो अगर नहीं कर रहा है और ऐसे इस टाइम पे जो है वो ऐसे स्लंप में चले जाते हैं क्योंकि लंच वंच कर लेते हैं और गर्मी का मौसम है, नींद आ रही होती है. मैं आ गई हूँ इसीलिए आपके साथ. आइए मुझसे बात कीजिए 3311 1063 पर. मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कॉल कर दो 4444 1063 पर. और मैं तो ढेर सारी चीज़ें आपके लिए लेकर ही आई हूँ बताने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ और जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: अच्छा जब भी आपके फ्रेंड से कोई गलती होती है या फिर यू नो एनीबॉडी इट कुड बी योर पार्टनर योर सिबलिंग और योर कॉलीग तो आप समझाते हैं प्यार से है ना कि इट्स ओके अगर ऐसा हो गया तो यू कैन फाइंड द सोल्यूशन थोड़ा काम रहो इतना ज़्यादा मत उसके ऊपर स्ट्रेस लो यही सब चीज़ें हम करते हैं राइट टू कंसोल समबडी टू काम समबडी डाउन जो स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो है ना पर अपने लिए क्यों नहीं करते हैं? जहाँ हमसे कोई गलती हुई ना ऐसे चढ़ जाते हैं चार्ज कर जाते हैं खुद पे कि तू कैसे गलती करती तेरी गलती है तू ही गलत काम करती है हमेशा तुझे कोई काम ठीक नहीं होता ऑल द नेगेटिव थॉट्स इन द वर्ल्ड कम्स और वो अपने ऊपर ही डंप कर देते हो बट दैट इज नॉट राइट जितना नाइस और काइंड हम दूसरों के साथ है उतना नाइस और काइंड हमें हमारे साथ रहने की भी ज़रूरत है तभी तो हम वो यू नो एग्जर्ट कर पाएंगे तभी चीज़ें हम पॉजिटिवली देखेंगे तभी उसका सोल्यूशन आसानी से निकलेगा एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस आप अपनी लाइफ की जर्नी में भी सो फार नोटिस कीजिए अगर कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ गई है देर इज़ अ सोल्यूशन समवेयर पर हम पैनिक करने में इतना बिजी होते हैं कि हमें वो नज़र ही नहीं आता है सो कभी भी कुछ भी हो थोड़ा शांत रहो खुद को थोड़ा प्यार से समझाओ काम करो कंसोल करो खुद को एंड देन यू विल इवेंचुअली फाइंड द सोल्यूशन कभी कभी वक्त लगता है पर मिलता ज़रूर है आप ये चीज़ ऐसे रिफ्लेक्ट करो अपनी जर्नी पे सो फार तो आपको रियलाइज होगा बाकी सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे तो कहीं जाने का नहीं सुधरिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
6: इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th टीएनसी

तनीषा के साथ आप रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और भाई क्रेजी वाली गर्मी हो रही है। प्लीज अपना ख्याल रखो, मतलब आप दो मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, पसीना, ओ माय गॉड, क्रेजी। सो प्लीज यू नो स्टे हाइड्रेटेड, लाइट खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह साथ रखिए, फ्रूट्स खाइए बहुत सारे, और बस डू वट एवर यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ऐसे धूप से निकल के आ रहे हैं एकदम से एसी में, तो फुल ऐसे ब्लास्ट नहीं कर देना है उसको, अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने दो, अदरवाइज गर्म सर्द हो जाता है, दैट्स व्हाट माय मदर सेज, मतलब कोल्ड हो जाता है जो हमें गर्मी में। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखो यार, क्योंकि ये बहुत अनोइंग होता है ये वाला कोल्ड, एक तो जाता भी ना फिर धीरे धीरे फेजेज में है, तो दैट बिकम्स वे मोर अनोइंग। सो प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और रेडियो ऑल ऑफ सुनते रहें, और जियो बिंदास कहते रहें।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas. Olive
3: Recharge. This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, aapke saath all of you talk chal raha hai yahan par. And have you noticed the people who are in your life right now, jo aapke bahut zyada close hain, aur jo process tha unse close hone ka, wo aapko process ki tarah feel hi nahi hua. Wo ekdam aise क्लिक हो गया, यू नो. सो देर इज़ दिस थियरी कि जो भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे आपके बहुत क्लोज होने वाले होते हैं इवेंचुअली इन फ्यूचर, या फिर जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो इन फ्यूचर, उनके साथ इनिशियल स्टेजेस में भी जब आप नए नए मिलते हो उनसे, तब भी आपको एक फेमिलियरिटी सी फील होती है. आपको लगता है कि ये नया इंसान नहीं है, इसे तो मैं वर्षों से जानती हूँ यार. एंड दैट हैपन्स विद आवर बेस्ट फ्रेंड्स. अगर आप उनको ऑप्शन ले, अगर आप उनका एग्जाम्पल लें, तो जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनिशियली उनके साथ ऐसा लगा नहीं कि यार ये तो बहुत स्ट्रेंजर है कोई, मुझे इतना ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए. इट जस्ट केम आउट नेचुरली, राइट? एंड दैट इज़ सो ट्रू. व्हेन आई रेड अबाउट दिस, आई वाज लाइक, मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, एंड यू नो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ माई फ्रेंडशिप्स एंड ऑल, एंड आई वॉज लाइक, हाँ यार ये तो सही बात है, ऐसा ही होता है. एक वो फेमिलियरिटी सा फील होता है कि इस इंसान को तो मैं पहले से जानती हूँ, ये कोई नया इंसान थोड़ी है मेरी लाइफ में. एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग ना. यूनिवर्स हैज सम वियर्ड एंड ट्विस्टेड वेज टू मेक यू मीट पीपल हु आर मेंट टू बी इन योर लाइफ, एंड दैट्स ब्यूटिफुल. एंड दैट्स अ रिमाइंडर फॉर यू, अगर आपने अपने उस दोस्त से जो आपके लिए बहुत खास है, और कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जो बहुत खास है, उनसे बात नहीं की है, कोई मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, तो आज एक मैसेज डाल दो. हाय, आई मिस यू, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. इतना भी काफी होता है. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: अप्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक
1: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Reach और चल रहे हैं यहाँ पर और
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: आज जो डिक्शनरी में से मैं वर्ड लेकर आई हूँ वो इतना रिलेटेबल है क्योंकि हम सब के साथ कभी ना कभी वो हुआ है लाइफ में. हम सब अपने बाल कटवाने जाते हैं, है ना, सैलून में. एंड कई बार जो हम उनको रेफरेंस देते हैं दे शो सो मच कॉन्फिडेंस कि हमें लगता है कि हाँ भाई ये तो हो ही जाएगा, परफेक्ट ऐसे ही लगने वाली हूँ मैं. और फिर जब वो बाल कट जाते हैं और उसके बाद वो वैसा नहीं लग रहा होता जैसा हमने रेफरेंस दिया है, तो ना हम इधर के रहते ना उधर के, क्योंकि अच्छाई के चलते हम ये नहीं बोल सकते हाँ ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है. उस इंसान के मुंह पे तो आप नहीं बोल सकते ना, उसने एफर्ट्स तो डाले हैं, ठीक है, नहीं ठीक हुआ वो, अब क्या ही बोले उसमें, बट स्टिल यू कैन से दैट ऑन देयर फेस. तो वहां पर आप ऐसे हाँ अच्छा लग रहा है थैंक यू पे वे करके घर आ जाते हैं. घर आके जो रोना निकलता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर लाइक अ मंथ और सो कि आपके बाल फिर से बढ़ जाए और यू नो नॉर्मल स्टेट पे आ जाए एंड बेटर लगने लगे, सूट करे हेयर स्टाइल आपको. सो दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ नॉट एबल टू टेलिंग द वट एवर हेयर स्टाइलिस्ट यू हैव गॉन टू और हेयर ड्रेसर यू हैव गॉन टू कि भाई ये जो आपने किया है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज़ कॉल्ड आगे ओतोरी. इट्स अ जापनीज कॉन्सेप्ट एंड क्या सही निकाल के लाए हैं, मतलब क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना. सो आप जैसे आए पार्लर से और वो ठीक हेयर स्टाइल नहीं करके दिया है उन्होंने, तो आप सिर्फ ये बोल सकते हो आई एम गोइंग थ्रू आगे हो तोरी. एंड मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है, मुझमें तो बिल्कुल जिगरा नहीं होता, मेरा तो हेयर कलर भी खराब हो चुका है. फिर मैं घर जाती हूँ और फिर मैं रोती हूँ मम्मी ये तो खराब कर दिया, देन माई मदर कॉल्स कि एक्चुअली दिस इज नॉट ओके, यू विल हैव टू रीडू हर कलर. एंड वो थोड़ा सा गुस्सा करती है ऑब्वियसली द लेडी, देन शी हैज टू. मम्मी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपको तो पता ही है ना. सो देयर रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: तनिषा।
1: अब जो मैं बात करने वाली हूँ ना, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। लेडीज माइट नॉट लाइक इट, मेन माइट अग्री टू इट टू अनदर लेवल। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल द 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, एंड देयर इज दिस रिसर्च, वो कहती है कि यू नो वुमेन दे इंटेंशनली स्ट्रेस आउट देयर मेन जस्ट टू यू नो कि दे स्टिल लाइक देम, दे स्टिल वॉन्ट देम इन देयर लाइव्स। तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस पर, किसी और की हुई रिसर्च है, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू, आप बताइए आपका इस पर क्या कहना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या लेडीज लोग एक्चुअली इंटेंशनली कभी कभी अपने पार्टनर को स्ट्रेस आउट करते हैं जस्ट टू नो कि उन्हें वो अभी भी पसंद करते हैं या नहीं, लाइफ में चाहते हैं या नहीं उन्हें। पता है मुझे क्या है आपका इस बारे में विचार? 3311 1063 पर कॉल भी कर सकते हैं, 4444 1063 पर। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनीषा
1: तनीषा के साथ आप रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम पर ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर एंड क्रेजी भाई क्रेजी. मैंने अभी एक रिसर्च की बात करी थी कि द रिसर्च सेज कि द वुमेन इंटेंशनली स्ट्रेस आउट देयर मेन टू नो वेदर दे स्टिल लाइक देम और वांट देम इन देयर लाइफ और नॉट. एंड यहाँ बवाल हो गया मेरे इनबॉक्स में जी. हर्षल जी का मैसेज आया है, मैं इस रिसर्च से 100% अग्री करता हूँ. मैं गुजर रहा हूँ इस चीज़ से. हर कुछ दिन में बिना वजह मेरी जो वाइफ है वो मुझसे झगड़ा कर लेती है और फिर बाद में मुझे यही रीज़न दिया जाता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वेदर यू स्टिल लाइक मी और नॉट. नहीं तो वो लेम क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर मैं इंसेक्ट होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते. एंड देन मुझे कुछ देर बाद हर्षल के ही फोन से उनकी वाइफ का मैसेज आता है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं तनीषा, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं. हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट होती है वो किसी न किसी लेजिट रीजन की वजह से होती है. आई डिड नॉट मीन दिस गाइज, ओके. आपने एक दूसरे से नहीं लड़ना है एंड इट इज ओके इवन इफ द वुमेन आर डूइंग दैट दे स्टिल क्रेव फॉर योर अटेंशन. दैट ऑल्सो शोज समथिंग रियली ब्यूटिफुल कि आप अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही मोहब्बत है एंड देर जस्ट ट्राइंग टू यू नो स्पाइस अप थिंग्स इन लाइफ. सो इट इज ओके, कुछ गुस्सा करने वाली बात नहीं है. बढ़िया करते रहो लेडीज लोग, मैं सपोर्ट कर रही हूँ. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
0: Olive Sono Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply. Whoa.

0: पर्सनली आई एम नॉट अ फीफा पर्सन, लाइक मुझे नहीं इंटरेस्ट है उस गेम में, प्लीज ऑफेंड ना होइएगा, नहीं देखा है. क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है. एक दो मैचेस मैंने यहाँ पे इन लोगों के साथ बैठ कर देखे हैं बिकॉज पीपल आर क्रेजी अबाउट इट हियर. एंड इससे ज्यादा क्रेज मैंने केरला में देखा है भाई, वहां तो हो भी ना, इंडियन तो फुटबॉल टीम भी नहीं है, फिर भी वहाँ क्या क्रेज है. लाइक उन्होंने सारी मर्चेंडाइज बना दी, टी शर्ट्स आ गए, मुंड आ गए हैं, जी हाँ, फीफा के लिए वैसे डिजाइन्स मुंड में उनकी बनी हुई है, जो भी टीम खेल रही है और जो उनकी फेवरेट है. क्रेजी मैडनेस, बट दैट इज द ब्यूटी यू नो, कि एक गेम जो कि आपकी कंट्री की टीम भी नहीं है, बट स्टिल यू नो यू फील सो मच इमोशंस इन दैट गेम, कि आप उसके लिए इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, इतनी एडमिरेशन दिखा रहे हो, यू आर डूइंग सो मच फॉर दैट गेम, एंड दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल. बीइंग अ ह्यूमन इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, है ना. ऑन दैट नोट, सेंडिंग अ ब्यूटिफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive
3: Recharge. This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ ओनली रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सुन लो ना मेरी बात. RadioOlive.qa is the handle हमारे सोशल मीडिया का, फॉलो कर लो फटाफट से नहीं किया है तो, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, आईफोन वगैरह जीतने का चांस है आपके पास. हाँ जी, जाके कॉमेंट कर दो उस पोस्ट पे. एंड देर आर अदर कॉन्टेस्ट, बहुत सारी वीडियोज हम पोस्ट करते रहते हैं, चेकआउट कीजिए. हमें पता चलना चाहिए कि चीज़ें आप तक पहुँच रही है. किसके लिए कर रहे हैं हम? आपके लिए तो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हैं, बस इतनी सी बात है और मोहब्बत है आपसे. सो जाइए थोड़ी सी मोहब्बत वहां पर दिखाइए, नहीं तो यहाँ आ जाइए 3311063 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par aur waqt ho chuka hai mere jaane ka meri jaan laut karungi kal dopahar 2 baje apna dher sara khayal rakhiyega swasth rahiyega mast rahiyega dher sara pani peete rahiyega kyunki crazy weather ho rakha hai ठीक है सो डू टेक केयर और फॉलो कर लो फटाफट से नहीं किया है तो और कोई भी बात हो ना जहन में तो बिल्कुल भी ऐसे हिचकिचाना नहीं है आप हमसे आके कोई भी बात कर सकते हैं आप दोस्त हैं यार और हम यहाँ सिर्फ बात करने के लिए नहीं बैठे आपको सुनने के लिए भी बैठे हैं सो यू कैन कम एंड वेंट आउट विद अस वी आर हियर फॉर यू 3311106 इज द नंबर यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल 4444106 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो

कितना सोना गाना है यार, प्रभ गिल की आवाज। आय हाय जी, मैं कह रही सोने की तरह की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर, थोड़े नाल जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुके अब।

खिलाड़ी यार, मेरे दिमाग में खिलाड़ी चल रहा है। एक फिल्म मैंने कल देखी, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आप बताओ, आज आपका दिन जो है वो कैसा रहा? वीकेंड तो निकल गया, अब पहला दिन जो है हफ्ते का चालू हो चुका है। अपने दिन के बारे में बताइए, गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजिए। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे फटाफट से अपने मैसेजेस भेज दीजिए। ये नए वाला कुली नंबर 1 से

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी

0: पक जाए मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सुन से लता जी और उदित नारायण सर की आवाज। स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे को कोल्ड हुआ है, मैं सच्ची में हो यार, तीन दिन से बड़ा परेशान कर रहा है। क्या होता है ना कि भाई गर्मी सर्दी वाला सीन जो है ना वो हो रखा है, बाहर बहुत गर्मी होती है, अंदर आते हो तो एकदम से एसी के सामने जो है वो हो जाता है, तो नाक जो है वो बंद रहती है। और फिलहाल के लिए नाक की बात ना करते हुए आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन मैच के बारे में बात करते हैं, साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में आज का मैच जो है वो रात के 10 बजे होने वाला है। सुया, आप कौन सी टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो और आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम कितने गोल करने वाली है? 3311063 पे बता दीजिए।

0: अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

एक चीज सब सुनो, खींच के लेके जाती हूँ जो मूवी मुझे देखने का मन होता है, क्योंकि मैं अकेले मूवी नहीं देख सकती हूँ, और एक दो बार वो अपनी मनवा लेता है कि हाँ भाई ये मूवी देखने का मुझे मन हो रहा। तो लास्ट टाइम मैं उसको लेके गई थी डिस्क्लोजर डे के लिए, सो मूवी बहुत बढ़िया थी, हमको एक्सपेक्टेशन थी नहीं। तो दिस टाइम मेरे को जाना पड़ा वेलकम टू द जंगल देखने के लिए। आई एम लाइक यार लास्ट मिनट भी कैंसिल हो जाए, लेकिन या फाइनली ये मूवी देखने गए, और जहां पर आपको लगता है ना कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो मूवी कई बार अच्छी निकलती है। ओवर 30 एक्टर्स वाली मूवी, मेरे को देख के पहले एंजाइटी हो रही थी कि यार मैं इतने सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मूवी में, क्या हंसे जा रहे हैं, ये है वो है। बट जैसे ही मैंने मूवी देखना स्टार्ट किया, ओ माई गॉड क्या मूवी है यार। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हंस रही थी, थिएटर में सारे के सारे लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लिटरली तालियां बज रही थी सीन्स के ऊपर और वन लाइनर्स के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, और एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि मैंने इस मूवी को देख के गलती की है, चाहे वो अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, हर्षद वारसी है, रवीना टंडन है। रवीना टंडन तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अक्षय कुमार के साथ काफ़ी बहुत सालों बाद पेयर हुई है, एंड परेश रावल, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, फरीदा जलाल एंड किरण कुमार, ये दो कैरेक्टर फरीदा जलाल और किरण कुमार, ये जो दो कैरेक्टर है ना, इन्होंने बवाल काट दिया यार। बहुत सारे ऐसे सरप्राइज एक्टर्स जो हैं वो आपको इस फिल्म में मिलने वाले। इन शॉर्ट मैं आपको कह रही हूं कि प्लीज ये फिल्म देख लो यार, मजा आ जाएगा, एंड यू वेलकम। पहली बोल रही हूं, दिमाग मत लगाना दोस्त, बाकी सब

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. It's not just a game, it's an emotion, it's an emotion, it's an emotion. FIFA ki har detail ke liye sunye Radio Olive.
1: In association with,
0: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just feel

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

भी अगर आपको परफ्यूम्स, ऊद और एकदम खुशबूदार रहना पसंद है तो ये जगह मैं आपको बताती हूँ जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है, तीब अल अहज़म। अब मैं वहां पर जाके आई हूँ खुद कल, तो मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं कह रही सोने की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है थोड़े नाल। जी हाँ बिल्कुल, तीब अल अहज़म एग्जीबिशन के लिए मैं कल गई थी और ये जो है 4 जुलाई तक चलने वाला है। लेकिन आज और कल के मैं बारे में बताऊं तो यहाँ पर फैमिलीज जो है वो अलाउड है आज और कल, है ना। सो हम लोग गए वहाँ पे परफ्यूम्स लेने के लिए, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग जगह से, बहुत ही बढ़िया वाले ब्रांड्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आप शौकीन हो यार कि आपको अलग अलग परफ्यूम्स और ऊद वगैरह जो है वो ट्राई करने का शौक है, तो डेफिनेटली आप जाइएगा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लंबी लंबी लाइन्स लगी है। कुछ तो ब्रांड्स ऐसे हैं कि आप इतनी लंबी लाइन लगोगे, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या बट रहा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऑफर्स भी आपको मिल रही है, कहीं पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है, कहीं पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, सो इतनी बढ़िया डील्स जब आपको परफ्यूम पे मिल रही है तो लाइनों में लगना, बट वो लाइनें भी एयर कंडीशन वाली है ना, आपको पता है कि मॉल वैसा है ना, तो आप खड़े हो बस। बहुत सारे लोग मैंने देखे कल, भाई पगलाए फिर रहे हैं यार परफ्यूम्स के लिए। सो यार हम लोगों ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये सुबह 10 से लेकर रात के 11 बजे तक जो है वो आप जा सकते हैं। फ्राइडे का टाइम जो है वो दोपहर 2 से लेकर रात के 11 बजे तक है, फ्री टू अटेंड है, कुछ नहीं है। बस जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक जो है वो कुछ तो मिलेगा, ठीक है, एक पेपर सा जिसके ऊपर पूरा एंट्री वाला जो है वो मिलेगा आपको, एंड दैट्स इट। जाके देखिए और खरीद के ले गए ये खुशबूदार परफ्यूम। कतर में रहते हुए ये काम नहीं आपने किए तो क्या ही किए यार।

0: SCB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

ये गाना आप में अगर एनर्जी की कमी है तो जरूर आपको जो है पूरी कर देगा। भाग मिल्खा भाग से उसके साथ साथ आए हाय इंतजार है, याद आ रही है किसी की। और ये टाइम जो है धीरे धीरे करके क्लॉक इज टिकिंग, क्योंकि 24 जून से स्टार्ट हो चुका है और 4th ऑफ जुलाई तक ये चलने वाला है। दोहा फेस्टिवल सिटी यानी कि DFC में सुपर सेल जो है वो चल रही है, जहां पर आपको फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बड़े मतलब अराउंड 550 ब्रांड्स के ऊपर 75% जो है वो अप टू 75% डिस्काउंट्स मिल रहा है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो जरूर जाइए। अगर आपने शॉपिंग वॉपिंग करनी है, सैलरी तो आ गई होगी आप लोगों की, और या फिर एक आध दिन में जिनकी लोगों की नहीं आई है तो आ ही जाएगी, तो जाके बढ़िया डील्स हैं आप लोगों के लिए और शॉपिंग कर लीजिए।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को

0: मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
1: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਦੱਸ जंगल फिल्म के बारे में और आप लोगों में से जितने भी हमारे लिस्टनर्स ने देखी है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको भी ये फिल्म बड़ी अच्छी लगी है।
1: सिमरन जी सेम टू सेम मैंने भी कल देखी है। वेलकम बैक टू द जंगल।
0: ओके
1: और मास्टरपीस
0: है ना
1: हंस हंस के
0: जी
1: जियो बिंदास
0: थैंक यू डॉमिनिक। नेक्स्ट टाइम जब आप वो स्लो रिकॉर्ड करेंगे ना तो प्लीज मेरी आवाज को कम कर दीजिएगा मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है जबकि मुझे आप लोगों की आवाज जो है वो सुननी होती है। बट थैंक यू सो मच। बाहर का मौसम क्या कहता है मेरा नाक बता ही रहा होगा बाहर का मौसम क्या कहता है भाई बताओ यार कितनी बेशर्मी वाली बात है सिमरन कौर तुमको गर्मी का जुकाम हो रहा है यार। मौसम के हाल अपने दिल के हाल बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि और क्योंकि जियो बिंदास और पानी पीना मत भूलिएगा हाइड्रेट करना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है और गोभी जैसी शक्ल बना के मत बैठा करो यार थोड़ा स्माइल कर लिया करो।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: पंजी लड़की बिल्कुल ड्रामे बाज है यार, लाइफ में थोड़ा तो ड्रामा जो है वो होना बनता है। लेकिन ये क्या है यार, मैं ना आज एक वीडियो देख रही थी, जापान की एक वीडियो देख रही थी जिसमें उनके होटल्स जो है वो कितने ज्यादा हाईटेक है, और उनके होटल में कुछ कुछ होटल ऐसे हैं कि वो पूरे के पूरे रोबोस ही आपको वहां पे दिखेंगे, वहां पर आपको कोई इंसान नहीं देखेगा। जिसमें से मैं बात कर पढ़ रही थी इसके बारे में, हेन्ना होटल के बारे में। सो हेन्ना होटल का मतलब, हेन्ना का मतलब है स्ट्रेंज होटल, ओके। सो वहां पर क्या है कि उन्होंने 2015 में ये होटल ओपन किया था। अब उनकी डजन लोकेशंस हैं अलग अलग जगह पे, है ना, अवार्ड विनिंग है, जहां पर अगर आप होटल के अंदर जाएंगे ना तो आपको रोबो ही दिखेंगे, वहां पे कोई इंसान आपको नहीं दिखेगा। वही चेक इन करेंगे, वही आपको अंदर लेके जाएंगे, और कपड़े धोने के लिए अलग से और प्रेस करने के लिए अलग से कुछ हाईटेक चीजें बनी हुई है, जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। रिमोट है, रिमोट से टीवी चल रहा है, रिमोट से सारी चीजें जो है वो एसी जो है वो एडजस्ट हो रहा है। सो वहां पे कोई इंसान है ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रोबो के साथ ही चल रहे हैं। मतलब कहीं कहीं पे, कहीं कहीं लोकेशन पे आपको जुरासिक चेकिंस जो है वो मिलेंगे। वहां पे आपको जो है यू नो पूरा ऐसे उनका अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं या जापनीज में। सो डायनासोर बैठे हुए हैं भाई वो रिसेप्शनिस्ट बन के। सो वो अलग लेवल के क्रेजी क्रेजी जो है वो मेरे को होटल दिखे। तो अगर आपने सर्च करके देखना है तो हेन्ना होटल जो है वो आप एक बार चेक करिएगा, सो आपको पता लग जाएगा। भाई साहब मेरे को भी जाना है यार इस जगह पे। सुमन गौरी आपके साथ, जी बिंदास रेडियो ओलिव पर।
1: Song of the Hour.

0: 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

जी मेरी जी सुनियो की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े नाल 7:05 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं जी। सो अभी क्या है कि बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाली जो है वो खबर ये है, और वो है कि कथा टॉय फेस्टिवल जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया, 31 जुलाई तक चलने वाला दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर 50 ग्लोबल ब्रांड्स होने वाले हैं एंड थीम जोन्स, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज, कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट जो है वो ये होने वाला है। सो या बहुत जल्दी अब क्या 1 जुलाई आने को कितना टाइम जो है वो रह गया है। सो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोग जो है वो भी वहां पे जा सकते हैं। एंड कतर में ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इनका मजा ही अपना एक अलग लेवल पे होता है। दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये इसमें आपको ऑलरेडी बता दूं, एंड टाइमिंग जो है इसकी दोपहर 2 से लेके 10 बजे तक होने वाली है वीकडेज में, एंड थर्सडे टू सैटरडे जो है वो इसकी टाइमिंग दोपहर 2 से लेके रात 11 बजे तक होने वाली है। सो यस, आप जा सकते हैं और यहाँ पर फन कर सकते हैं। 7:17 स्टूडियो की घड़ी पे आने वाले गानों में से ये गाना नॉस्टैल्जिया है यार। अभी सीने में इसको चुराया जाने किसने, शाबाश कवर यार, मैं नहीं भूलती हूँ उन्होंने इसमें वो लेदर का जैकेट और ट्राउजर जो है वो पहन रखी होती है, और हमें इसका वीडियो भी काफी अमेजिंग है। उसके साथ साथ चांद दिख रहा है, रेडियो ऑलिव कर के दे रहे हो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई.

पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ?

0: भाई कितना खूबसूरत गा रहा है, और बाहर अगर आप चांद देख रहे हो तो और भी खूबसूरत। BTS के फैन है उनको पता है जंगकुक जो है वो क्या चीज है, राइट? मेरी भी एक फ्रेंड बहुत ज्यादा क्रेजी है जंगकुक के लिए, उसको लगता है एक दिन वो शादी करने वाली है जंगकुक से तो मैं उसको चिढ़ाती हूँ, जंगकुक जीजा जी के क्या हाल है। चलो ये तो मजाक हुआ, क्योंकि जब आपको कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होता है तो फिर आप अलग अलग लेवल पे जो है वो उनको प्यार करते हो, और कुछ जो प्यार है वो सिर्फ बातों में नहीं, वो ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है कि आप उनके लिए ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। रिसेंटली मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि एक BTS की फैन, जंगकुक की सबसे बड़ी फैन, सो वो इतनी बड़ी फैन थी, ब्राजीलियन फैन, सो वो उसके घर पे जो है वो पहुंच जाती है, एक महीने में 22 बार जो है वो का उसके घर पे जाने की कोशिश करती है, वहां पर लेटर्स फोटोग्राफ्स जो है सब कुछ छोड़ती है, और एक दिन में उसने 133 बार, उसके सिंगल इवनिंग की बात कर रही हूँ, 133 बार उसके घर की डोरबेल जो है वो बजाई है। सो ये बात जो थी वो पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने जो है वो उसको एक साल की जेल की जो है वो सजा सुनाई है, लेकिन वो इमीडिएट जेल उसको नहीं होने वाली है, बट 2 साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि लाइक उसने इसमें क्या होगा कि इस 2 साल के अंदर उसको इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी है, अदरवाइज उसको इमीडिएटली जो है वो जेल हो जाएगी। सो कभी कभी सेलिब्रिटीज को लेके आम लोगों का जो ऑब्सेशन है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो सामने वाले को भी परेशान कर रहे हैं और वो खुद भी परेशानी में आ जाता है। तो दूर दूर से बातें कहना, उनके बारे में सोचना इज ओके, हम सबको जो है वो क्रश आ जाता है, हम पगला जाते हैं सेलिब्रिटीज को देख के, लेकिन इस तरह की हरकत करना गलत है यार। एक नंबर गाने आप लोगों के लिए प्ले हो रहे हैं और बैंड बाजा बारात भी लेके आएंगे थोड़ी देर में।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: हो हाँ दीदी हाँ रुक जा का रियलिटी चेक जो है ना लड़के जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि बात आपकी करने वाली हूँ हमेशा तो मैं हम सबकी बात करती हूँ बट आज सिर्फ आपकी
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: पहले ये दो तीन लाइनें मैं सुनाऊंगी आप लोगों के लिए जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं अभी मर्द जो है वो मुझे सुन रहे हैं यू नो तो ध्यान से सुनिए कहते कि पुरुषों को वहां से पढ़िए जहाँ से वो मौन है ये हंसना हंसाना तो हुनर है उनका. देखो क्या होता है ना कि ठीक है लड़का लड़की का भी यही होता है कि ठीक है अगर मन उदास है लड़कियों का है ना तो वो क्या करती हैं उनके चेहरे पे दिख जाता है रोज चिल्ला के उनको कोई पूछ ले कि क्या है वो बता देती हैं है ना. लड़कों की मैंने ये चीज़ देखी है ठीक है हंसना हंसाना हुनर है उनका वो मैं मानती हूँ लेकिन जब उनके अंदर कुछ चल रहा होता है वो मौन हो जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं और उनसे कोई पूछे भी तो वो बताते नहीं है कि नहीं सब बढ़िया है बढ़िया चल रहा है. सो क्या होता है कि जब वो मौन है ना तो मतलब उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता नहीं कि उनको हिला सकती हैं कभी भी लाइफ में. बहुत कुछ जब अंदर चल रहा होता है तो जब इंसान जब एक लड़का जो है एक मर्द जो है वो मौन हो गया ना तो फिर उसको समझने की वहां से ज़रूरत है. ऐसा नहीं है हम लड़कियों की तरह कि हाँ किसी ने पूछा और उन्होंने बता दिया नहीं बताएंगे वो. तो वहां पे एक टेस्ट तुम्हारा भी होता है कि अगर आप उनके साथ हो आप उनकी फीमेल फ्रेंड हो या पार्टनर हो या बहन हो या मम्मी हो है ना मम्मी को तो सब बता ही देते हैं फिर भी है ना. सो वहां पे आपका पेशेंस जो है वो थोड़ा सा टेस्ट होता है कि अगर वो मना कर रहे हैं तो आप रुक जाइएगा लेकिन जब वो कंफर्टेबल फील करेंगे वो बताएंगे जरूर आपको. बट उतनी देर में टच में रहिए कि ये जो खामोशी है वो सब कुछ ना छुपा दे कि वो फिर बता भी ना पाए आपसे. सो जितने भी लड़के हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि जब भी आपके अंदर कुछ चल रहा होता है किसी एक से शेयर कर लिया करो. कोई आपसे पूछे तो थोड़ा सा चाहे टाइम लो पर बता दिया करो. कुछ भी इतना हैवी नहीं होता है. लड़कों को लगता है कि नहीं यार बताएंगे तो उनको लगेगा उनका माचो खराब हो जाएगा ऐसे कि नहीं बताना है बट शेयर करना जरूरी है यार.

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: हां जी थोड़ी देर पहले जैसे मैं रियलिटी चेक में बात की थी लड़कों के बारे में कि लड़के जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव जो है वो नहीं होते, उनकी लाइफ में जब कुछ चल रहा होता है वो खामोश हो जाते हैं, उनसे कोई पूछे भी ना तो वो बताते नहीं है।
1: सिमरन जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल, बढ़िया जी।
1: आपने जो बात बोली जो हम लड़कों के बारे में, 100% आपने सही बोला कि हम लोग के जिधर दिलों में कुछ बात चल रही है फैमिली से इशू रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी एनीथिंग, तो चेहरा ही बता देता है। और दूसरी चीज जल्दी हम किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घूमते रहते। तो ये क्या बताएं जी, इस मर्दों के लक्षण है। और आपने जो अभी एक जब वो गाने का लास्ट सीन सॉन्ग चल रहा था तो आपने रुक जा बहन रुक जा मुझे अच्छा लगा। काशवा बोली थी थम जा
0: थम जा दीदी, बोल दूं अब?
1: थैंक यू
0: लो जी मैंने बोल दिया। बट यस राजीव जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर शेयरिंग। या क्योंकि क्या होता है कि मेरे भी मेल फ्रेंड्स है ना, मेरा भाई भी है, मेरे जीजू भी हैं, सो जो भी मेल जो है वो मेरे अराउंड है, मैंने वही चीज़ जो है वो हमेशा देखी है कि वो जब खुश होंगे तो बस ठीक है, सबके साथ मजा मजाक जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जब वो खामोश होंगे तो वो बताते ही नहीं कि वो खामोश क्यों है, क्योंकि जो इंसान हमेशा हंसता रहता है ना, तो अगर वो खामोश हो जाए तो आपको लगेगा, वो ज़्यादातर बताते ही नहीं है, वो उनको लगता है कि खुद से खुद की फाइट है, वो खुद ही लड़ लेंगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए, टेक योर ओन टाइम, कोई बात नहीं, हर एक इंसान कंफर्टेबल होने का टाइम लेता है, लेकिन बता दिया करो यार। Come on, भाभी तो बैठी है यार। सुंदर रेडियो ऑलिव को एंजॉय करो इस गाने को। अगले घंटे नेम गेम खेल रही हूँ, तैयार हो जाइएगा अपना नाम सुनने के लिए।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक
2: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ओलिव नंबर वन।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: beautiful track, right?
1: और
0: क्या कहता है गाना

0: डेडिकेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी। देखो, थोड़ा सा प्यार तो आपको रेडियो से हुआ है और थोड़ा बाकी है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपको जाना है और हमको फॉलो करना है, क्योंकि
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है।
0: बिल्कुल, रेडियो ऑलिव को अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपके फोन में 7500 एप्लीकेशन होंगी, अगर रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन नहीं है तो क्या फायदा यार। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा जो बाकी है उसको भी कर लीजिए। एप्लीकेशन का फायदा यह है कि आप कहीं पे भी, अगर कतर से बाहर भी चले जाते हैं, छुट्टी भी चले जाते हैं या फिर जहां पे भी शिफ्ट हो जाते हैं कहीं पे, तो आप रेडियो ऑलिव को कभी भी मिस नहीं करेंगे। सो या जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ और लेने वाली हूँ आप सबके नाम। सो या नाम टाइप करके रखिए
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल।

0: Pampanga's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज.
1: थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी,
0: अब ना रुकूंगा मैं. चलो नेम गेम खेलने वाली हूँ. अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अभी कभी रेडियो पे लिया जाए तो आप डिजर्व करते हो डार्लिंग, लेकिन नाम तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे. अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करो 3311063 पर. जी हाँ, 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो. अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ. शेर सिंह, इफ्रा, सरफराज, रोहन, राजीव, फैजल, रमन, विक्रांत, डोमिनिक, यूसुफ, बेला, वेरोनिका, फातिमा, अतर, आफताब, आयरा सरफराज, थैंक यू सो मच. सफदर जी, आकाश पटेल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. क्विकली नाम लिखिए यार 3311063 पर. उस्मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. आयुर्दा, थैंक यू सो मच. आबिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. भगवान गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. अगला गाना शुरू होने वाला फिर मत कहना. बनी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रिहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आबिद नूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आयुर्दा, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ. केपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. खौसला साहब जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. निर्वाण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रिजवान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सिर्फ और सिर्फ दोस्त अपना नाम लिखो क्विकली 3311063 पर आपका नाम. आयरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. फजल जी, थैंक यू सो मच. फातिमा जी, थैंक यू सो मच. मेहुल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. जिया खातिब जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रमन जी, थैंक यू सो मच. सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. भगवान गिरी, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ. आसिफ जी, थैंक यू सो मच. मुकू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अमर जी, थैंक यू सो मच. सामी जी, थैंक यू सो मच. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बड़ा, अब आप थैंक यू बोलो, लिखो मुझे व्हाट्सएप करो, और साथ में फेवरेट वाला इमोजी जो आप हमेशा यूज करते हो वो भेज दो.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: भाई क्या प्यारा गाना है यार, दीवानियत से। 8:51 लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने।
1: ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा
0: गरम गरम है और सच्ची में वेदर की बैंड बजी हुई है।

0: चलो जी अब कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा। अगले 2 घंटे बड़े ऑसम वाले गाने जो है वो आप लोगों के लिए प्ले करने वाले हैं। एंड खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: ये रात

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. यस, स्टार्ट हो चुका है मिडनाइट लाउंज और मुस्कान है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. हर दिन मैं एक ऐसी किताब की बात करती हूँ जो बात करती है या तो किसी लेसन की, या किसी रिलेशनशिप की, या कोई लव स्टोरी, या कोई फिलॉसफी. पर आज हम बात करते हैं 2026 को समझने के लिए एक जरूरी किताब, एल्गो स्पीक्स. सो आजकल उन सोशल मीडिया पे चीज़ों को हम देखते हैं जो पहले यू नो डिक्शनरी में वर्ड्स ही नहीं थे, पर ब्रेकअप की जगह अब हम हीलिंग जर्नी जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली इंटरनेट ने ही बनाए हैं. सो लैंग्वेज बदल रही है या एल्गोरिदम हमें बदल रहा है, ये तो सवाल है भाई. इसी के साथ लेकिन पहली बार हिस्ट्री में जो इवोल्यूशन है उसको सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. यानी हम सिर्फ ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे, ऐप्स हमारी वोकैबुलरी भी डिज़ाइन कर रहा है. और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट की स्टोरी नहीं है, ये हमारी जनरेशन की स्टोरी है, जहाँ नए वर्ड्स जो हैं सिर्फ डिक्शनरी में नहीं, रील्स और यू नो मीम्स में भी पैदा होते हैं. तो आज रात का सवाल है कि आपने इंटरनेट से कौन सा वर्ड सीखा जो आज रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं आप. सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कभी ऐसा हुआ है आप YouTube खोलते हो सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए और आधा घंटा बाद सोचते हो कि मैं यहाँ तक कैसे? Netflix बोलता है यू मे ऑल्सो लाइक, Spotify बोलता है भाई रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं वो तो देख लो एक बार, Instagram कहता है कि सिंस यू वॉच्ड दिस तो अब धीरे धीरे ये भी देख लो। हमें लगता है कि मतलब हमें एक्चुअली लगने लगता है कि ये जो चॉइस है ये हमारी है, लेकिन क्या सच में? भाई फैक्ट ये है कि डिजिटल बिहेवियर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस आती है ना, ये सिस्टम हमारी प्रेफरेंस को सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करता, कभी कभी शेप भी करता है। यानी आप जो देखते हो उससे अगला रिकमेंडेशन बदलता जाता है और वो जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है वो आपकी नेक्स्ट चॉइस है। और मुझे लगता है ये बहुत ही फैसिनेटिंग बात है कि टेक्नोलॉजी हमें कन्विंस कर रही है या फिर कन्वीनियंस दे रही है, लेकिन क्यूरोसिटी ये तो कम नहीं कर रही। क्योंकि पहले हम यू नो शॉप्स में ब्राउज करते रहते थे और आज एल्गोरिदम हमारे लिए ब्राउज करता है। सो सवाल ये है कि लास्ट टाइम आपने बिना किसी रिकमेंडेशन के क्या डिस्कवर किया था जो आपको लगा यार ये बढ़िया है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सिनेमा की बात करते हैं लेकिन क्लाइमेक्स की नहीं, उस यू नो फीलिंग की जो एंड में क्रेडिट के बाद भी साथ रहती है। यस कभी ऐसी मूवी देखी है जिसके खत्म होने के बाद आपने टीवी बंद नहीं किया हो, बस दो मिनट चुपचाप बैठे रहे हो, जैसे द लंच बॉक्स, मसान, अक्टूबर, ये सब ऐसी ही मूवी है। ये मूवीज आंसर कम देती हैं और थॉट्स ज़्यादा देती हैं। फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ग्रेट एंडिंग वो नहीं होती जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, ग्रेट एंडिंग वो होती है जो ऑडियंस के दिमाग में फिल्म को जिंदा रखे। और शायद इसीलिए कुछ एंडिंग्स हम भूल नहीं पाते। मूवी ख़त्म हो जाती है, कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, तो आज का सवाल ये है कि कौन सी फिल्म का एंडिंग आज भी आपके साथ चल रहा है। बाय द वे ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मैंने देखी और उसके बाद मुझे लगा कि यार बड़ा ब्यूटीफुल मूवी। आई एम श्योर आपने भी ऐसी कोई ना कोई मूवी देखी होगी, हो सकता है वो मैंने मिस कर दी हो। सो मैसेज करके बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सो आज एक अनयूजुअल ट्रैवल टॉपिक की बात करते हैं. हम ट्रैवल प्लान्स बनाते वक्त क्या सर्च करते हैं? बेस्ट फूड, बेस्ट शॉपिंग, बेस्ट नाइट लाइफ. लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे शांत जगह ढूंढते हैं, जैसे कि जापान का फॉरेस्ट, आइसलैंड के ओपन लैंडस्केप्स, और कुछ रेगिस्तान में आपको सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है. सो साइलेंस ब्रेन को रीसेट करने में हेल्प करता है. इसीलिए लोग चाहते हैं कि अगर किसी वेकेशन पर जा रहे हैं तो एक दो दिन किसी शांत जगह पर जाएं. इसलिए कभी कभी वेकेशन सिर्फ साइट सीइंग नहीं होता, नॉइस से ब्रेक लेना भी वेकेशन होता है. मेरे लिए तो वो रूम मेरा, वही मेरा वेकेशन हो जाता है. और ऑनेस्टली आज के ज़माने में साइलेंस भी बहुत बड़ी लग्जरी बना हुआ है, क्योंकि आप हर वक्त फ़ोन चलाते हो, हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो. तो आज का आपसे सवाल भी ये है कि आपको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? एक बीच पर, एक लाइब्रेरी में, या अपने रूम की बालकनी में? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, और नंबर है 3311106. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट लव।

वेलकम बैक, गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ गाने हम खुद चूज नहीं करते, वो हमें कोई और देकर जाता है। जैसे समटाइम्स यू नो पापा की कार में बजता हुआ मोहम्मद रफ़ी का गाना, या फिर मम्मी की मॉर्निंग प्लेलिस्ट हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हॉस्टल का रूममेट जो रोज़ एक ही गाना रिपीट करता था, यार मेरा तो पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही है, ही इज़ लाइक कि रोज़ एक ही गाना सुनना है ये। या फिर किसी दोस्ती की बात करूँ तो किसी ने बोला है कि एक बार ये गाना सुन और फिर बताना, और फिर पता नहीं क्या चलता है जब वो गाना हमारी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर बन जाता है। सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम सिर्फ म्यूज़िक से इमोशनली अटैच नहीं होते, हम उस इंसान से भी अटैच होते हैं जिसने हमें वो म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करवाया होता है। इसीलिए कई बार ना गाना सुनते ही लिरिक्स या फिर ट्यून से पहले एक चेहरा याद आ जाता है, और शायद इसीलिए म्यूज़िक इतना पर्सनल होता है। हर प्लेलिस्ट के पीछे एक कहानी होती है। सो आज का सवाल है कि कौन सा गाना है जो आपको किसी अपने की वजह से पसंद आया और आज भी सुनते ही उसकी याद आ जाती है। सुन रहे हैं आप रेडियो ओलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311106 3, stay tuned, Jio, Bindaz.

So, कभी नोटिस किया है, पहले हम फेसबुक पर दोस्त होते थे, फिर पोस्ट करते थे, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज, और आज बहुत सारे लोग पब्लिक पोस्ट से ज्यादा प्राइवेट ग्रुप चैट्स में एक्टिव हैं। फैमिली ग्रुप, ऑफिस ग्रुप, स्कूल फ्रेंड्स, या वो एक छोटा सा ग्रुप जहां सिर्फ 4-5 लोग हैं, लेकिन बातें सबसे

ज्यादा वही होती है। सो डिजिटल कल्चर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया धीरे धीरे पब्लिक शेयरिंग से प्राइवेट शेयरिंग की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि लोग लाइक से ज्यादा रियल कॉन्वर्सेशन ढूंढ रहे हैं। और कभी कभी 500 लाइक से ज्यादा वैल्यू उस एक मैसेज की होती है जो किसी दोस्त ने भेजा हो। तो ठीक है ना, आज टेक्नोलॉजी बदल गई, एप्स बदल गए, लेकिन कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं बदली। सो आज का सवाल आपसे ये है कि आप पब्लिक सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर प्राइवेट चैट्स में, और क्यों? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज। और सच बताऊं भाई, पब्लिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ चार लोग हों जो आपकी बातें बिना किसी जजमेंट के सिर्फ सुने, उनको जवाब देने की जल्दी ना हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सूरतदार आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज की किताब ना बिल्कुल अलग है, ना कोई मर्डर मिस्ट्री, ना कोई रोमांस, ना कोई सुपर हीरो, सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स, अच्छे एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन में अर्थ के राउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। किताब का नाम है ऑर्बिटल और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्पेस से अर्थ देखने पर ना कोई लाइंस दिखती है, ना कोई कंट्रीज दिखती है, सिर्फ एक ब्लू कलर का प्लैनेट दिखता है। सो एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब करता है जिसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। जब वो पहली बार स्पेस से अर्थ देखते हैं तो उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम जितनी चीज़ें बनाते हैं लाइफ में, प्लैनेट तो एक ही है। और शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ स्पेस के बारे में नहीं, पर्सपेक्टिव के बारे में है। कभी कभी जगह नहीं बदलती, सिर्फ देखने का एंगल बदल जाता है। सो अगर आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए स्पेस में अर्थ देखने का चांस मिले तो सबसे पहले किस चीज़ को आप देखना चाहोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. और आज की रात का आखिरी थॉट भी ये है कि हम अक्सर कहते हैं ये गाना मेरी मेमोरी है, लेकिन कभी सोचा है कि गाना ही नहीं आवाज़ें भी मेमोरी होती हैं. सोचिए, प्रेशर कुकर की सीटी, स्कूल की लास्ट बेल, गली में क्रिकेट खेलते बच्चों की आवाज़, दूर से आती आइसक्रीम वाले की घंटी, या संडे मॉर्निंग पर दूरदर्शन का वो फैमिलियर ट्यून. सो न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि फैमिलियर साउंड्स ना ब्रेन में इमोशनल मेमोरीज को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देते हैं. इसीलिए कई साल बाद भी एक आवाज़ हमें सीधे बचपन में लेकर चली जाती है. हर जनरेशन का अपना एक साउंड ट्रैक होता है और उस साउंड ट्रैक में गाने कम और ज़िंदगी ज़्यादा होती है. सो आज रात का आखिरी सवाल है आपसे कि आपके बचपन की वो कौन सी आवाज़ है जो आज भी सुनते ही दिल को एक अलग सी खुशी मिलती है. याद रखिए, कभी कभी यादें फोटो देखकर नहीं, बस एक छोटी सी आवाज़ सुनकर भी वापस आ जाती है. सो आज के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं कल रात को विद मिडनाइट लाउंज. तब तक के लिए स्टे ट्यून, जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास